ऐसी दुनिया जहाँ फितरत आम तौर पर सुनाई नहीं देती, लेकिन हम अब इसकी आवाज़ सुन रहे हैं।